वचन होता तुम प्रकाश कई कुड़ तात के बेते सदन हरे कुनेत्रे कई कुड़ नाम रस पीवे हमने पहले सत सादी जीवे कई कुट नाम गुण गावे आत्म रसो सह समावे अपने जन को सा सत समारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बल हारना जल थल माही अल सोए अष्टपदी कारण करावन करने जोग ज्योतिष भावे सोई हो खिन में था पुथा पनहारा अंतर के पारा बारा हुक्मे तर आधार रहावे हुक्मे उपजा हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देख अपनी विद्याई नानक सब में रह समाई प्रभ पावा मानुख गत पावे प्रभ पावे त पाथर त्रावे प्रभ पावे बिन शास्त्र राख प्रभ पावे त हर गुण पख प्रभ पावे त पत तु उधार आप कर अपन बीचार दोहां सिरां का आप स्वामी खेले बिगसै अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवै को मानुख ते क्या हुई आवै ज्योतिष भावै सोई करावै इसका हथ हुए तो सब किस ले ज्योतिष भावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचा जे जानत अपन आप बचा पर मैं पूला दस दिस तावे निमकमा चार कुंट फेर आवै खर कृपा जस अपनी भगत दे नानक तेज न नाम मिले खिन मैं नीच गीच को राज पार बम गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दस दिस प्रगटावै जाको अपनी करे बख्शीश ताका लेखन अगन जगदीश जियो पिंड सब तिजकी रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बड़ा इसका बल ना ही सहाथ करन करावन सर्व कुनाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावे सोई फन थियो कबू ऊंच नीच में बसा कबू सो गर्ख रंगसा कबू निंद चित व्यवहार कबू उबखा सयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला बनहार कबहु नृत्य करे वह पांत कबहु सोए रह दिन रात कबहु महा क्रोध विकराल कबहु सर्व की हो तरवाल कबहु हो वह बड़ राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अप कीर्त में आवै कबहु भला भला कहा जो प्रभ रख तिवि रह कृपा साध नानक सच कहा कबहु हो पंडित करे बख्यान कबहु होन तारी लाव ध्यान कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु से साधक मुख ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग हो जिया नानक जोन परम है परमीया नाना रूप जो सांगी दिखावै जो प्र भावै तवन चावै ज्योतिष भावै सोई हुए नानक दूजा वरना कुए कबहु सा संगत हो पावै ओसा स्थान ते बौर न आवै अंतर हो ज्ञान प्रगास ओसा सनक नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बस पर बम कै संग जो जल मै जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सतगुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राजभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को गर्मंत कहावै जन्म मर बजुन परमावै तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसाव नानकी हम मुखता गै सुख पावै तनवंता हुई कर गर बाबा तृण समन कर संग रजावे बहु लश्कर मान खूपर करे आस पाल पीतर ताका हुए बिनास सब ते जहां आप जाना बलवंत खिरमे हुए जाए पस मानत किस न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे विमान सोजन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अणक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अणक जतन कर आत्म नहीं तवै दरगह हर दरगह कहो कैसे गवै आपस को जो भला कहावै जिसे भलाई निकट ना आवै सर्व की दिन जाग का मन हुए कहो तो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझ ते कछु हुए तब इसको सुख ना ही कोई जबे जाना मैं किश करता तबला गर्भ जोन में फिरता जब तारा को बैरी मी तबला निचल ना ही जीत जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राज दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे सहस कटे लख उठता वै तृपत नाव माया पाछा पाव अणक भोग विख्या के कर नंत तृपता वै खप खमरा बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बढ़ भागी के सह प्रापत हुए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करन करावन करना हर इसकात कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किश किन सपना रंग सब ते दूर सब हुका संग बुझे देखा करे विवेका आपे का पे अनेक मरण बिरसा आवे ना जाए नानक सदी रह समाय आप उपदेशा समझा आप आपे रज सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सबके सुख करना हार उसते बिन कहो किश हुए थान तनंतरे कह सोए अपने चल त्याप करना हार कौत कर रंग पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे कि

फिर जाप अष्टपदी जब अकार हो कशना दृष्टि ता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब भैर विरोध का संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सो को किसे व्यापत जाप अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ केसो होवत परमा आपन खेल आप वरतीजा नानक करना हारना दूजा जब होवत प्रभ केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हरग में पार तब नरक सुरखो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आपह आप अपनी जोत तरह तब कमन डर कमन कत डर आपन चलत आप करण हार नानक ठाकुर अगमय पार अविनाशी सुख आपन आसन तहां जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेखा तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मायल क्यों क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश तह छाल छिदर लगत को कीस जहाँ जो स्वरूपी जो संग समावा तह किसा पू कवन तृपतावा करण करावन करण हार नानक करते करना है सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई जहाँ सर्व कला आप पर भीन तह वेद कतेब कहाँ कोचीन जब अपन आप उतार तो शगन अपशगन कहाँ विचार जहाँ आपन ऊचे अपन अपनेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जहाँ शल छेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आप है देश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जहाँ एका एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लग चिंता जहाँ आपन आप पति हरा तह कौन कथा कौन सुनना हारा बहु बेअंत हुई ते ऊंचा नानक आपस को आप पहुँचा जहाँ आप रचो प्रपंच आकार गुण में किन्नु विस्तार पाप पुनता पई कहावत को नरक को स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचा तो नानक एक जहाँ अवगत भगत आप जहाँ पसरा पसार संत प्रताप दोहों पाह का आप तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप कौतुक कर आनंद चोज आप रस भुग निर्जोग जिस भावा तिस पन्ना हिलावा जिस भावा तिस खेल खिलावा बेशुमार अथाह अगण ते अतोला ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोला इस श्लोक।

विशिष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुननहार आप ही कप विस्तार जहाँ तिस भावै तिष्ट उपाय आपड़ भण लय समाय तुम ते भिन्न नहीं केशु हुए आपण सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए साच नाम सुविजन पाए सो समदर्शी तत् कहबेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता कहात दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राखै तिस कोय न मारा सो मुआ जिस मनो बिसारा तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल साब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाना आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाला जी अनुभव भांत

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सत सिमर गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद आस अनित्य अगुत रंग संत जना की धुर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग भज परमानंद नरक निवार उद्धरो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो।

जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान, इन मैं कष्टे रो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देखो बिन सैशन मैं मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे काट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हरे अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहे मान, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तान। स्वामी को ग्रेजो सदा स्वान तैतनी नित, नानक के बिदहर पजो एक मन हो एक चित। तीर्थ बरते अर दान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर स्नान। सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते हीन, कौ नानक वे बिद पई तौ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, कै नानक थिर नार है ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सकल जंजाल। दोहरा बाल छुट क्यो बंधन परे कशु न हो त्यो पाए, कौ नानक अभी उठ हार गाज ज्यो हो सहाय। बाल हो आ बंधन छुटे सब किश हो त्यो पाए, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। सांग सखा सब ताज गए को नन भियो साथ, कौ नानक के विपत में टेक एक रघुनाथ।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगण संग आला पै अठो नंदन प्रथम राग पैर रोवे करही पंच राग नि संग उचरही प्रथम पैर वे बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुण्य असले की पई बारी ये पैरों की पंचो नारी पंच महारग दिशाक सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौ सकिया लापै संग रागनि पंचों थापै गुण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनास्त्री ए पंचों गाई माल राग कौ सक संग लाई मारू मस्त अंक में वारा प्रबल चंड कौ सकियो बारा खौ खटियो पौराण दगाए अष्टमाल को सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अठ सो तुटै तान कलोल गायन तार मिलावे ते लंगी देव करी आए बसंती संदूर सुहाए सरस्वही रीले पार जा संग लाई पंचों आर जा सरमानंद पास कर आए चंद्र बिमंगलन सुहाए सरस बानियो आय बिनोदा का मैं सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुन आई दीपक की बारी का शैली पट मंजरी टोडी कही लाप का मोदी यो गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतल्यो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा यो कान रा करे आना अष्ट पुत्र दीपक के जाना समिण श्री राग वे गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अला पीसरी राग से पांचों था पीसालू सारंग सागर आय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम वेग राग वे गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी उच्चे सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग से पांचों चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबड़ी तार नाट्यो जल तारा पुन गावे शंकर यो श्यामा

दुख रोग संताप उतरे सुने सची संत साजन पे सरसे पूरे गुरते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर मात पिता हम बारक तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊंचे ते ऊंचा सगल

मुरै कंठ तन भेख दुख नासना वासु संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हिद सिद नवनिद बसे जिस सदा कर पर त्रै रावण जाहे से ता लाजी है नित प्रत हिरै पर दर्ब चित्र कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हरे हां सुनते पे पुनीत पार ब्रह्म बिचारई ऊपर बनया आकाश तलै तर सोहती दस चमकै बीजल मुख को जोहती।

मित का चित अनूप ब्रह्म न जानिए, गाहक गुनी अपार सो तत पछानिए। चितै चित समाए ता होवै रंग कना, रहा चंचल चूरै मार ता पावै सचत ना। सुबन उबी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला। खोजो ताके चरण कहो कत पाईऐ, हरे हाँ सोई जतन बताए सखी प्यो पाईऐ। नैण न देखै साध से नैण बिहालिया,

सब जावे। औखद नामे अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावे संत सगल को दीजई। जसै प्राप्त होए तिसै ही पावणे, अरे हाँ हम्बले हारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदासन दा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया।

भूजन सुरत संजोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम पिरम कै गनो एक कर कर्म मूसन।

नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, याद जुगा दे सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलिहारी इस जात को जह जपे सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहा डुलावे जियो, सर्ब सुख को नाय को राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने।

पेश हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारिए जह मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो वै कारिया कार उबे जंत, लैफाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े उटाक पलास, होए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बड़ाई बुढ़िया इमत डूबो कोई चंदन।

काफले अपने हाथ। कबीर जहा जहा हों फिरयो कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बाहराय उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली।

पवन चकोलन हार, संतो माखन खाया, छाछ पिया संसार। कबीर माया डोलनी, पवन वह अवतार, जिन बुलोया तिन खाया, अवर बिलोवन हार। कबीर माया चोरटी,

कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, हुए न बार बार। जो बन फल पाके पुए गिरे, बहुर न लागे डार। कबीर तू ही कबीर तू, तेरो नाओ कबीर। राम रतन तब पाइए जो पहले।

मेट न साका कोए, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए। राम कसौटी सुस है, जो मर जीवा होए। कबीर उजल पैर कापरे, पान सुपारी खाए,

जो भोगवे जन को गुड़लै खाहे। कबीर मैं जान्यो पड़बो पलो, पड़बे स्यों पल जोग, भगत न छाडो राम की पावै नंदो लोग। कबीर लोग के निंदे बपुड़ा जेहि।

सोई फिर कह तुम पे आंजा को कहता और कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर ओ झूले ओ चीरिए साकत संग ना हेर।

अपने पारे न डरै आगै औकट काट। कबीर बन के दादी लाकरी ठाडी करै पुकार, मत बस परो लोहार के जारै दूजी बार। कबीर एक मरण ते दुए मुए, दुए मरण ता चार, चार मरण ता छह मुए, चार पुरख दुए नार।

कबीर कारण बपुरा क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग तरो सोई मुरमर जाए। कबीर यवरा कोई उपदेश ते मुख

सब तार जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम न जाए आप डुबे चो बेद में चेले दिए बहाए कबीर।

जगत उलंग जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलन जाइए, साथ न लीजै कोए, पाछे पाओ न दीजिए, आगे हुए सो होए। कबीर जग बद्यो जेह जेवरी ते

जाय पहुचै खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजा मूल ले मन हट तीर्थ जाहे। देखा देखी स्वांग तर पूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजा सब संसार। इस पर वासे जो रहे बूढ़े काली काली तार। कबीर कागद की उबरी मस के कर्म कपाट। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता ये भय कर

मुक्त को संत जपावै नाम। कबीर जेह मार्ग पंडित गए पाछै परी बहीर। एक अवकट घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। कबीर दुनिया के दुखे मुआ चालत कुल की कान। तब कुल किस का लाज सी

कबीर पली पई जो पोपया, दिसा गई सब भूल, ऊरा घर पानी पिया, जाए मिलियो टल कूल।

पलट पई सब खे। जौवन पहुता पह नहीं जह पहुता हर नाहे। कहे ओ कबीर विचार कै संत सुनो मन माहे।

कबीर निर्मल बूंदे आकाश की पर गई भूम बिकार बिन संगत इउं मनई होए गई पठचार। कबीर निर्मल बूंदे आकाश की लीनी भूम मिलाए अनिक सियाने।

महला पंजवा। कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हु के नाहे, जिन रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चढ़े आटा गिर परया, किचु ना आयो हाथ, पीसत पीस

कबीर जो मैं चितवो ना किरै, क्या मेरे चितवे होए अपना चितवे हर किरै, जो मेरे चित न होए। महला तीजा चिंता पी आप कराए सी, अचिंत पी आपे दे, नानक सो साला ही है जे सबना सार करे। महला पंजवा

पुकने कबू के सुने पुकार, कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर में मंत यंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख को चरी, पारख आगे खोल कोई आए मिले गो गाह की, लिगो मैं गे मूल कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब।

कबीर पांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ बरत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। निज लोयन कर रहो ले साजन कट मा।

गुरु प्रसाद जित दिहाड़े तनवरी साहे ले लिखाए मलक जे कन्नी सुनी दा मोह दे खाले आए।

जिंद वहोटी मरण वार लै जासी परनाए अपन हथी झोल कै गाल लगै ताए। वाल हो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए फरीदा किड़ी पवंदई।

लुच जाय सब कोई। एहो पिरम प्याला खसम का जय पावै तै दे। फरीदा जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ कजल रेख ना सहदें आसे पंखी सुए बैठ।

जो सिर साई नानिवै सो सिर की जय काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदै थाए।

सबर मांजक मान, ये सबर का निहणो सबर संदा बाण, खालक खता ना करी। सबर अंदर साबरी ताने वै जा लेण, होण नजीक खुदाए दे भेत ना किसे देण। सबर हो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ कर हे, वद थी वै दरियाओ टुट ना थी वै वाहड़ा।

कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत कवन सो वे सो हो करी जित वस्या वैकंत निवन

हर गुरु नानक जिन परसे हो से जन्म मरण दोहों थे रहे हो। सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिए। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखे ओ तेह जन त्रिपत अघाए। जेहे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत तेहे प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो।

रे मन मूस बिला मैं गर्बत करतब करत महा मुगना संपत तो दोल चोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कोकना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बड़्यो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीत त्याद करत यगना मृत मंजार मसार मुख निरखत पुंचत भुखत भूख भुख ना।

लग। नीर न साकस बोर चले हे, हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहुपाती उचरत, बिचरहे अनक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीरथ बहु भ्रमते, सूखम देहे बंधे बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोम पाका, अनक था भांत थाटे कर थटुआ। सवैये महले पहले के एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिखियाता। तास चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे। गावहि गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे। गावहि इंद्राद भगत प्रहलाद, के आत्म रस जिन जान्यो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माने, गावे जिन काद जुगत जोगेसर। हर जा रस पूरन सर्ब कला, गावे सन काद साध सिदादक। मन जन गावे अछल छला, गावे गुण धूम अटल मंडल वै। भगत पाए रस जान्यो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माने, गावहे कपिलाद आद जोगेसर। अपरंपर अवतार वरो, गावे जम दगन परसरा मेसर। कर कुठार राग तेज हरिओ, उदो य क्रूर बिद्र गुण गावे। सर्वात्म जिन जान्यो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माण्यो, गावे गुण बरन चार खट दर्शन। ब्रह्मादिक स्मरंथ गुणा, गावे गुण शेष सह।

निरंतर जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। राज जोग माण्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर। गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगहां लग धन धन गुरु धन।

जाति दृष्ट अमृत धार, कलख खन उतार, तिमर अज्ञान जाहे दर्स द्वार। ओए जो सेवे शब्द सार, गाखड़ी बिखमकार, ते नर पावे उतार, किए निरपार। सत संगत सहज सार, जागीले गुर विचार, निमरी भूत सदीव परम प्यार।

तै तो दृढ़ो नाम अपार, बिमल जास बिथार, साधक सिद्ध सुजान, जिया को आधार। तू ता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार, रहे जगत्र जल पद्म विचार। कल्पतर रोग बेदार, संसार ताप निवार, आत्मा त्रिविद तेरा एकले अवतार। कहो कीरत कल सहार, सपत दीप मजार, लहना जगत्र गुर परस मुरार।

ये फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हेरत शब्द गुरु त्याई अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई नाम निर्माण निधान हर उर तरो गुरु गुर गौर करो गुरु हर पाई गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गणतर तीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरें ते संत हित भक्त गुर गुर करें तरु प्रहलाद गुर मिलत मन जन रे तरें नारदाद सन काद हर गुर मुखें तरें कनाम लग तजु रस अन रे दास बिनत कहे नाम गुर मुकलह गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सत जुग जंत्रु पर श्री प्रहलाद भगती उदरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोय गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लैणा थाप जोत जग तारी लैणा पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया तिन श्री रामदास सोढ़ी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौं जोग गुरसेवा कर फल लहियं बंदह जो चरण शरण सुख पावहि परमानंद गुरमकइयं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरणं सतगुर गुर सेव अलखगत जाकी श्री रामदास तारण तरणं जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपहि कर विचित चाउ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति जीतें जम लोग पत्र जे प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुबंश तिलक सुंदर दशरथ घर मन बंछें जाकी शरणं सतगुर गुर सेवय लख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं संसार अगम सागर तुल्ला हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण भगा एह आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच्च पई तज माया मोह लो बर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुट क्या दिब्ब दृष्ट कारण करणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं परताप सदा गुर का घट घट परगाश पया जस जन कै एक पढ़ें सुनें गावें प्रभतहिं करहिं इशनान इशनान करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद सहित करं कंचन तन होए परस पारस कौ जोत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रया पूर्व विद वर्णन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरियो समुद्र रुद्र खनिक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सभी ऊपर मन बच

अगयंतक बदै न सल कब गुर रामदास तेरी शरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरं सोई पुर किया चले अविनाशी। जिस सिमर दुर मत मल नासी सतगुर चरण कमल रिद तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर की ओ प्रगाशा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो। भगत जो को जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लागि उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो। बड़भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो। वगम्य गुचिर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनुभव ठहरायो।

देव सबै मन इंद्र महाशिव जोग करी। फन वेद बिरंच विचारयो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे तरी।

हृदय गुरु अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पाग लिलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पशुतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारण कौ अवतार बनायो। जप

काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उधारण बसें संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण।

अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नहावे, नित प्रण बचिए वेद ब्रह्मा मोगावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुक लियो, गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हरबंस जगत जस संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरमयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गए ते पाग पाप तिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर रामदास जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी

नहीं काल पहुँचो आन कौ नानक नर बाबरे क्यों न पजय भगवान। तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इन मैं का संगी नहीं नानक साची जान। पत ते उदारन पहरन हर अनाथ के नाथ

ना तैस मरत गत होए, जैस मरत गत पाई ते पाजर तै मीत। कौ नानक सुनरे मना औद कड़त है नीत। पांच तत् को तन रचयो जानो चतर सुजान। जह ते उपजयो नानका लीन ताहे मैं मान। गड़ गड़ मैं हर जू बस संतन के हो पुकार। कहो नानक ते पज मना पौने दे उतरे पार। सुख दुख जय पर से नहीं लोभ मोह अभमान। कौ नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहें जय कंचन लो समान। कौ नानक सुन रे मना

मन कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै कहूं को देत नै पै मानत आन कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कौ नानक सुन रे मना ते दर माथे पाग जे माया ममता तजी सब ते पैहो दास कौ नानक सुन रे मना ते काट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान कौ नानक वह मुक्त नर ए मन साची मान पैनासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम दिस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जे बा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम कौ नानक सुन रे मना परे न जम कै ताम जो प्राणी ममता तज लोभ मोहंकार कौ नानक आपन तरै

बिन सनीत जग रचना तैसे रची को नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंद कहो नानक बिन हर भजन

रहे हो, मिटे हो न मन को मान, दौर मत स्यो नानक फदे हो, राख लियो भगवान, बाल जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरदा सब ही मां, करणो तो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवते अंद, मन माया में रम रेओ, निकसत नाहिं मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों,

अमृत है पूरन होवे काम, झूठे मान कहाँ करे जाग सोपने जो जान, इन मैं कश तेरो नहीं नानक के हो बखान, गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत,

सात गुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच ब्रंगण संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंज रागनी संग उचारे प्रथम भैरवी बिलावली पुन्य की गावे बंगली पुनसले की के पे बारी ही है पैरों की पंचो नारी ही पंच मर्द सा सुना वह बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावे ही अपनी अपनी पां दया सुभद्र भैरव कह गावे गायन पात्र द्वितिया माल कौशकला पै संग रागनी पंचो था पै गौंड करी और देव गंधारी गंधारी सूती उचारी तनासरी पांचो गाई मारा कौ साक संग लाई मारू मस्तंग मैं वारा पर बिलचन कौशक अभारा खाहड़िया पौरन दिगाए अष्टमाल कौ साक संग लाए पुनाए हंडोल पंज नार संग सोटी उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई ससी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र में मंगल सहाय सस बानु आए बनोदा गावे सब बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी का शेली पड़ मंजरी टोडी गई अलाप काम मोदी ओ गुजरी संग दीपक थाव का लंका कुंतले ओ रामा कमल गो चंपक नामा गौरा ओ कन ला कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक जाना सा मिल सिरा वह गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पासे सिंध भी लापी श्री राग से पांचो तापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र सिरा के गुण कौंभीर कस्तमे रावे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोड गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उचे सुरसो पुनगिनी मेघरा स्यों पांचों चीनी बैरा दर गई दर के दारा जवली तन डो जल तारा पुन गावे संकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खस्त राग उन गाए संग

दुखदारू सुख रोग पिया जा सुख तामना होई। तू करता करना मैं नाही जा हुकरी ना होई। मलेहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मैं जोत जोत मैं जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिवत सवाले जिन कीती सोपा।